0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

0: Dit is Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।
1: जिस दर पे सभी एक है।
0: सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन के आवास में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज जबकि शनिवार का दिन है तो ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया

सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपके बाहर महेंद्र कपूर की आवाज में एक सुंदर सा भजन जो

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में महेंद्र कपूर के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। पंडित जयशंकर जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

लगता है भजन बस बरुआंबे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी प्रसून मुखर्जी की आवाज में।

रेडियो एसपीएस के जरिए प्रसून मुखर्जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए विपिन सचदेवा की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश की गई है। चले प्रोग्राम में सुरेश वत्कर की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर और सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।
1: आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

9 स्टूडियो डेट हो चुका है। आज शनिचर है, शनिवार का दिन है, 3 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हॉलैंड देश के अंदर मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम, धूप ही धूप का मौसम होगा, झूरा मौसम। तो आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अरविंद, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 0302266611। इसी टारगेट नंबर पर आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। सभी को वेलकम कहा जा रहा है, जो लोग रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, और सभी जो आज सुबह की वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम में स्टूडियो की ओर भी तार किया है, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, चुनका यही मतलब होता है कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। आशा उम्मीद है कि आपके गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी तरफ से आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चलते हैं हमारा आज का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में शुरुआत करते हैं एक प्यार भरी गाना से, एक तेरा साथ हमें

से भी प्यारा है मोहम्मद रफी, और लताजी की आवाज में फिल्म वापस उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम पे पेश किया गया। आसरो भी थे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। 9:00 प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम तकरीबन 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। आज शनिवार का दिन 3 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम नागिन। नागिन फिल्म का गीत प्रोग्राम में लता जी की आवाज में आप जरूर सुनते ही रहे।

नागिन का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, सरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, और साथ ही साथ उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार, अपना डाक हॉरोस्कोप भी आप जाकर देख सकते हैं, और तरह तरह की खबरें, तमाम इंफॉर्मेशन आपको भी दिया जा रहा है। शहरी तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 41 साल से यानी कि 41 साल हो चुका है यह हमारा प्रोग्राम यूट्रेक्ट शहर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी रेडियो स्टेशन है हॉलैंड देश के अंदर में। चले प्रोग्राम में आज शनिवार की सुबह के प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है, किशोर कुमार एंड लता। हम देख रहे हैं रेडियो SBS का ऐप पर काफी रिएक्शन आते रहते हैं। सुनने वालों इस वक्त गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं, और बैकग्राउंड पर हम देखते हैं तो तार भी आ रहा है, तो देखेंगे अभी कौन तार पर है। तार और ऐप तो यहां पर नॉन स्टॉप आते रहते हैं। तुम ही हो, तुम ही हो, जाने जा अब मेरी जिंदगी में। मोइन उमर, किशोर एंड लता।

किशोर कुमार और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई, तुम ही हो तुम ही हो अब मेरी जिंदगी में। गाना जो पेश की गई काफी खूबसूरत गाना था, फिल्म का नाम था रंगीला रतन। रंगीला रतन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। एक बार फिर से किशोर कुमार होगा 030-2266-66 हेल्प स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और इसी तार की नंबर पर भी आप ऐप कर सकते हैं रेडियो एसबीएस का ऐप पर।

किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत गाना आपकी सेवा में बस पेश की गए। पवित्र पापी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए। टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में काफी दिनों के बाद ये गाना पेश किया जा रहा है। साथी मिलते हैं बड़ी ही मुश्किल से।

0: की आवाज में ये गाना बस में इसके गए साथी मिलते हैं बड़ी ही मुश्किल से। सुनवाई किशोर कुमार है, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश हुआ है।
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो की ओर तार किया है देनहाग शहर की रहने वाली कमला। कमला हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं। लता जी की आवाज में जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म सौतन का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। देनहाग शहर की रहने वाली कमला की खास मांगे हुए गाना आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप भी एक खूबसूरत गाना सुनना चाहेंगे आज शनिवार की सुबह के प्रोग्राम में तो आप तार कर सकते हैं स्टूडियो की ओर, या तो रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं।

साउथन फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना और खास तौर पर देनहाग शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। असरों भी थे गाना आप सभी सुनने वालों ने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो एसबीएस की जरिए जो पेश की गई। हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो की जरिए बस पेश किया जा रहा है। अपना मोटर कार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। एक गाना प्रोग्राम में पेश होगा ना तुम बेवफा हो और गाना आज के प्रोग्राम में मांग करने वाली रोटरडम शहर की रहने वाली रिया। रिया स्टूडियो की ओर तार किया और ये पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है। सुनने वालों इस प्रोग्राम में अगर आपको गाना मांग करना है तो पुरानी फिल्म का गीत होगा, इसलिए कि प्रोग्राम का नाम भी है पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम। लता जी की आवाज में एक कली मुस्काई फिल्म का नाम ना तुम बेवफा हो, लता जी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। लता जी की आवाज में अभी आपने सुना ये गाना जो पेश हुआ है ऐडो फिल्म एक कली मुस्काए। रोटरडम के रहने वाली रिया की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अब की बार मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और इस गाना को मांग करने वाली है सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी। नलिनी ये गीत को मांग किया है।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना जो पेश की गए मोहम्मद रफी की आवाज में, ये रात फिर न आएगी। और खास तौर पर सुतमेर शहर की रहने वाली नली ने ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। उसी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का। और प्रोग्राम को जरूर जरूर सुनते ही रहना। 13 मिनट 4:03 स्टूडियो टाइट हो चुका है।

एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, आशा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, फिल्म सावन की घटा। उसी फिल्म का खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और स्टूडियो की ओर तार किया है निर्मला। निर्मला दनहाग शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हमेशा फॉलो करते रहते हैं और आज की प्रोग्राम में निर्मला दनहाग शहर से तार किया है और ये गीत का मांग किया है।

देखिए आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई दरहाल शहर से निर्मला तार किया और ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं और वो भी रोटरडम आहोई में RTM स्टेज में। अपना टिकट जो है जरूर आप जाकर खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट पर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए भी आपको खबर किया जाएगी कि कितना ढेर सा टिकट बिक चुका है। तो अगर आप उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहेंगे तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए iStripTickets.com और मिलकर देखेंगे सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। उदन शहर में हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं लैला लक्ष्मण और लैला लक्ष्मण खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में और फिल्म का नाम है

वक्त सुनते हैं रेडियो SBS का, जहां पर एक से गाने जो सुनने वालों ने मांग किया है बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, और सभी गाने जो सुनने वालों ने मांग किया है एक से एक खूबसूरत गाने होते हैं। हमेशा मैंने कहा कि द लाइव रेडियो SBS द हैव अ स्मार्क, एनन फिर तक यार से सुनने वालों हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं रेडियो SBS, तो जरूर स्मार्क होगा। तो चले प्रोग्राम में गाना की ओर, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है, और गाना को मांग करने वाला

0: गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में, उनका गाना जरूर आप सुनिए। कौन सा गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में, आम्स्टरडाम शहर का रहने वाला मीका सुखो।
1: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन।

सबको खबर थी ऐ दिल रंगीन शहर भी होगी। जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी

मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना टाइटल सॉन्ग, फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है। और ये खास खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में आम्स्टरडम शहर का रहने वाला मिका सुखो जी ने मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए कि तुमसे अच्छा कौन है। भाई मिका सुखो, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख शुक्रिया। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और हिस्सा ले रहे हैं, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। आमसफोर्ट शहर से मन्ना सुखाई आप सभी सुनने वालों के लिए गाना मांग किया है मन्ना डे और साथियों की आवाज में। और फिल्म का नाम पैगाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। आमसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाई का मांगी हुई गाना।

माइटी मुकेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खूबसूरत गाना मुकेश जी की आवास में मांग किया आज की प्रोग्राम में, खासतौर पर वाडिंग्स फेन। वाडिंग्स फेन शहर का रहने वाला राम, राम ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर भी स्टूडियो का टेलीफोन नंबर होता है। अब की बार गाना जो पेश होगा लव इन कनाडा, फिल्म का नाम लव इन कनाडा, मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत गाना उसी फिल्म का सुनेंगे। और देखा जाए रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू भी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं एक खूबसूरत गाना से, और फिल्म का नाम जिस तरह से मैंने आपको खबर किया लव इन कनाडा, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

0: और रेडियो SBS की जरिए फिल्म लव इन कनाडा, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं, हमेशा भी सुनते हैं, आज भी सुनते हैं और काफी सालों से भी सुनते हैं। उत्तराखंड लाइट सराय गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी हमारा प्रोग्राम इस वक्त भी सुनते हैं। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ खबर किया है कि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में डमाइटी मुकेश की आवाज में गाना मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए। छोटी बहन फिल्म का नाम है। उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है डमाइटी मुकेश की आवाज में।
1: जाऊं कहां बताए दिल,

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम।
1: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में द माइटी मुकेश की आवाज में पेश की गए
1: चांदनी आई घर जलाने
0: गाना को सुनना चाहते थे आज के प्रोग्राम में उत्तराखंड लाइट्स राइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी ये खास गाना आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया है जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए ठीक 10:30 का वक्त चले प्रोग्राम में हेडलाइंस न्यूज आपके लिए पेश किया जा रहा है और फरकीर से इंफॉर्मेशन उसके बाद तुरंत और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जाएगी।
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Het aantal dieselpersonenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: 10:01 व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। शनिवार का दिन 3 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है कल रविवार 4 तारीख अक्टूबर है और कल दीरन दाह का दिन है। फरमाइशी इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामकाज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में आपकी हर एक कामकाज किया जा रहा है। आपकी फरमाइश से 5 यूरो पर फरमाइश तमाम खबरें तमाम रिक्लाम जो है ये भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से आपके लिए पेश किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और बहुत से सुनने वाले होते हैं जो ऐप द्वारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए फोटो बनाकर भेजा है कि इस वक्त कॉफी के साथ बैठे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। तुरंत और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में आम्स्टरडम शहर से ईफोन ने तार किया है। ईफोन भी काफी दिनों से हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं आम्स्टरडम शहर के अंदर में।

हिमलता जी की आवाज में, हिमलता जी की आवाज में तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं। आम्स्टरडम शहर की रहने वाली ये इफोन ये गीत को मांग किया है 1000 हेल मोई नंबर फसोंग दूर।

हिम लता जी की आवाज में ये खास गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। आम्स्टरडम शहर से ईफोन ने तार किया और ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आश्रो उम्मीद है आप सभी सुनने वालों ये गाना को सुने और बेहद पसंद किया है। एक से एक खूबसूरत नगमे बस रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, जो हमारे सुनने वालों ने मांग किया है। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में सभी को हम लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद कहते हैं कि आप सभी प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं और खूबसूरत नगमे बस मांग किया है आज की ये प्रोग्राम में। एक और काफी प्यार भरी खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार का फिल्म है। तो गाना जो प्रोग्राम में मांग करने वाली है, हाँ, इन दिनों सुतमेर शहर के अंदर में भी काफी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा एक खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम।

कबरा और मकान फिल्म का नाम मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। ये गाना को सुनना चाहती थी और इसी तरह से पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है। एक बार फिर से सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया सभी को शुक्रिया धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में काफी खूबसूरत नगमे सुनने वालों ने मांग किया जो प्रोग्राम में पेश की गए। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है सुपर मार्केटों को दवा के पास आज शनिवार का दिन जबरदस्त अक्से ही अक्से रखा गया है ढेर सा सामान पर। तो जरूर आप तशरीफ फरमाइए सुपर मार्केटों को दवा के पास प्रिंस बर्नार्डप्लेन नंबर 54 उत्रेख जुइलर में और जाकर देखिए दुकान के अंदर में कितना ढेर सा सामान होते हैं जिस पर दाम ही दाम गिराया गया है। उसके साथ भी आपको खबर किया जा रहा है आने वाले दिनों घर पर कोई भी खुशियां है या कहीं पर नौता वगैरह फरियारी में आप जाने वाले हैं और अच्छे कपड़े पहनकर आप जाना चाहेंगे तो जरूर आप तशरीफ फरमाइए मुस्कुराता दुकान के पास। मुस्कुराता फैशन जो होता है देनहाग शहर के अंदर में कारल और रोस्ट्राद नंबर 4 पर, वहां पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी कपड़े इंडिया भारत देश का कपड़े आपको दिया जा रहा है सस्ती दामों में। द ग्रोथ्स इंडियास क्लेडिंग विंकल जो हॉलैंड देश के अंदर में होता है वो है मुस्कुराता। 300 वर्गांत मीटर बड़ा दुकान है और दुकान में काफी सामान आपके लिए होता है इंडिया भारत देश का कपड़े से लेकर के गहने बदांकियस और छोटे बड़े मूर्ति यहां पर भी आपको दिया जा रहा है। एक बार जरूर आप तशरीफ फरमाइए और अगर आप गए और सामान खरीदा है तो कहना कि रेडियो SBS आपको भेजा है तो एक्स्ट्रा कोटिंग आपको दिया जाएगी। कार्ल रोस्ट्राट नंबर 4 देनहाग शहर के अंदर में जो है मुस्कुराता दुकान द ग्रोथ्स इंडिया से क्लेडिंग विंकल इन नीदरलैंड। चले प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है और एक आखिरी सुनने वालों की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाली है अलमेरा शहर की रहने वाली रोसिता अल्गो जगाई। खास गाना मांग किया है खुद अपने लिए और सभी सुनने वालों के लिए। फिल्म का नाम दोस्ती।

0: गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई अलमेरा शहर के रहने वाली रूसीता अलगो जगाए ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया खुद अपने लिए और सभी सुनने वालों के लिए। आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश की गई पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में और एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना भी। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया गाना मांग किया सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ दिया है प्रोग्राम में गाना मांग किया है और पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम को सजाए हैं। सभी को शुभ दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Radio SBS wens je een heel fijn weekend. En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Raga Events proudly presents Bade Mia Chote Mia live in concert. Udit Narain and Aditya Narain. Father and Son, samen, live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy, RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Bade Mia Chote Mia live in concert Udit

अतीस फिल्म का नाम। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। 11:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। 8 मिनट ओवर 11 स्टूडियो टाइट। शनिचर का दिन वीकेंड है, शनिवार 3 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी को शुभ दिन। बाहर की ओर देखा जाए मौसम तो बड़ी ही खूबसूरत सुहाना मौसम है। आज का मौसम इसी तरह से रहेगा, झूरा मौसम, धूप का मौसम। और रेडियो SBS पर खूबसूरत नख़मे बस पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से कुमार सानू, साथ में होगा अलका। फिल्म शायद आपने देखे होंगे, फिल्म का नाम है आरजू। दोस्ती करते नहीं, हाँ दोस्ती हो जाते हैं।

रेडियो SBS की सरिये कुमार सानू और अलका जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आंसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना जो अब की बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अलका जे की आवाज में। और आपको मालूम होना चाहिए सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडम अहोई में। टिकट अपना खरीदिए i-ticketspoon.com वेबसाइट पर। उदित नारायण एंड अलका, दुलारा फिल्म का नाम।

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुबह के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। Het is inmiddels 8 minuten voor 11:30 studio tijd. Bollywood

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश की गई एक मुलाकात जरूरी है सनम गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो के अंदर काफी डर आते हैं और सुनने वालों बस यही बताते हैं कि यही खबर करते हैं कि मौसम बड़ी ही खूबसूरत सुहाना मौसम है तो चले गाना भी खूबसूरत होना चाहिए इस मौसम में।

जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई ये कैसी मुलाकात है। फिल्म आ अब लौ चले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अनुराधा पोटवाल एंड कुमार सानू प्रोग्राम में। गाना के बाद खबरें पेश किया जाएगी और खबरें के बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर तुरंत हम आपको ले चलते हैं। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और पहला गाना होगा हरीश खान की आवाज में, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और गाना का बोल है छूकर मेरे मन को। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, रखिलियो और

है तू, धड़कन में है तू, पीस की गई प्रोग्राम में रखिलियो और साथियों की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में विम डमरी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए विम दमड़े की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार प्रोग्राम में सतीश के आवाज

रेडियो SBS के जरिए सतीश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, लोकल टाइम का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में मरहूम नदीम खान की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक मेरेंगे मैथिली पेश किया जा रहा है। मरहूम नदीम खान की आवाज में

और रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान की आवाज में ये गाना बस भी इसकी गए आंसरों भी थे कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सिटी वालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में और पेश हुआ है खास तौर पर लकी सिंह की आवाज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.net। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस आज के लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं शहीद वाहिद हुसैन और मधु की आवाज में एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

में पेश की गई। आसरा उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आखिरी घंटे का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक आप सुनते ही रहना। विनेश प्रोग्राम

रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। विनेश के बाद मिका सुखू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार संदीप की आवाज में गाना पेश होगा। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। शेड्यूल ट्रैक से ये प्रोग्राम हमेशा और सालों से लाइव की जरिए

Studio Valo Studio K, telefoonnummer 030-262-6611. और बाकी हर एक कामकाज के लिए 24 घंटे पर दाग बराबर होता है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर 032-65-65-60.

धीरज की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मिस्टर विका की आवाज में हर हर के डाल। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो

का की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में असरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में प्रशांत की ओर हम आपको ले चलते हैं। प्यार दीवाना होता है रेडियो एसबीएस की जरिए लोग

होता है। प्रशांत की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शेडू ट्रक से रेडियो SBS का प्रोग्राम सालों से पेश किया जा रहा है और आज भी वही स्टेशन का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में मिस्टर सतीश होगा, सतीश बिंद्राबन कोकोलांपू, आपके बार गाना जो पेश किया जा रहा है।

सुनम असरों मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है असरों मीठे आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार धीरज की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना जो होगा कम एट द कास्ट। आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म होने

का वक्त। मैं आप सभी सुन वालों से बस फिर मिलूंगा। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। सभी सुन वालों जो तार करके अपना रिएक्शंस दिया है, कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुन वालों से बस फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय टिल टुमारो।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में। आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है, धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर्स पार्क। Gaan we verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गजोंगे दूर सोनू निगम एंड अलका याचिक एंड कॉम टू द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gieton Killeher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

भी सिर फिरा तू भी सिर फिरी इस गजंग दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजंग दौर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में। और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना, के की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।

तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खसंगदोर, आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर। खसंगदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी, फिया रेडियो SBS, तुम पुकार लो।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चि